0: Arslan trained endlessly, day and night, his focus sharp and his mind locked on one goal. But every time the Tekken World Tour Finals came around, fate seemed to get in his way, and the pressure of the world's expectations weighed heavy on him. Giving up comforts for just a few more hours of practice, Arslan pushed himself beyond limits. Yet, despite his determination, something always stopped him at the final hurdle.
1: First top 8 at a TWT final. He's got the spot.
2: मैं जो दो इवो जीत चुका था और मैंने सोचा कि यार ये भी जीत जाऊंगा इजी है जिससे पहले जीत. तो इंसान है गलतियां करते रहते हैं हम थोड़ा सा गुरूर में आ गया था थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत जाऊंगा जो कि मैं फिर मुंह के बल गिरा मैं हार गया.
3: When you become a very big thing, people are likely to find loopholes in your game.
4: Practice में थोड़ी सी इसने कुताही की.
2: आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप मुझे मैं रियलाइज करता हूँ कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने टाइटल को मेंटेन करने के लिए.
5: पता नहीं ये टेंशन भी आ जाता है कि मैंने जीतना लेकिन नहीं हो पाता उससे.
6: असल में ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान हर दफ़ा जीतता रहे.
7: अरसलान काफ़ी इमोशनल भी होता है कहता कि यार तुम्हारे पास टेकन वर्ल्ड टूर का टाइटल है मेरे पास ईवो का टाइटल है.
8: TWT finals has always eluded him.
9: The Tekken World Tour follows a different sort of format. So Arslan had difficulty understanding how that would work.
10: 이상하게 이제 파이널에 왔을 때 뭔가 굉장히 어려워하는 느낌이 이제 들었어요. 왜냐면 그때 플레이도 뭔가 아슬란이 뭐 평소에 하던 그런 느낌이 아니고.
2: 근데 이 दफा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जीतने के लिए और मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड भी हूं क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट है फॉर टेकन का. अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो मैं हिस्ट्री बना लूंगा दुनिया के अंदर.
1: He is the greatest of all time without a doubt. Nobody has as many Evo titles as this man right here and he's done it again.
2: चलो दुआ करना. तीन घंटे बाद फ्लाइट है ठीक है. बीबी चलो निकल रहा हूँ मैं गाड़ी खड़ी है पार्क से. चलो ठीक है मम्मा निकलता हूँ.

0: वो फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी, और गेमों में लाइन से कुछ तीन चार गेमें लगाई थी, पहले भी टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो

0: वहाँ पे मुझे कोई नहीं आ पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको इजीली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
1: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even though I was very bad, I remember that one of my brothers, who was one of my brothers, he was very bad. Even though I was very bad, I remember that one of the arcade center went inside me and was very bad. और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊं कि मेरी बिस्ती हो रही है वहां पे, जो लोग मेरी इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्होंने वहां पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन मैं गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर मैं फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़े दिन बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा दो तीन दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
2: मैं जाके ले आती थी, वो रहती थी, मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के आने से पहले पहले इसको घर ले आओ।
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सबने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है, गेमिंग में जाना है, तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर जिस तरह की मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
1: Arslan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arslan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arslan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना प्रोपिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल का है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कुछ रख करूँगा। ए में लग सकता है ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर इस्लाम ए में, तो नी पीछे से आ गया कितना इस्लाम भी उलसान भी आ गया। मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप पे आ गए, इस साल मैंने कहा नहीं। मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ए आ गया, इस बार मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
3: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी, उसमें क्या होता है कुछ। मैंने फिर घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती थी।
4: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
2: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
4: तो मेरे लिए ये हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा। रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना, तो 5 मिनट के लिए पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद ही घर आना, तो मसला नहीं।
3: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके लिया था, तो बस फिर बच्चे सवाद हो जाते, कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी तो वजह ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेल

0: जाएंगी, मम्मा जो मर्जी कर लें। तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
1: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
0: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो कुछ बन जाओ।
1: तब मैं दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को, लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप खूब करो ना तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्क लेना लाइफ के अंदर। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कर मिस किया, मैं मुझे एक बार मौका दें आप, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा, अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा, मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए।
2: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

0: beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
1: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं जीतूँगा
2: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए
3: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है ये कैसे जाएगा
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
1: हम जिस सेंटर में खेला करते थे उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास पैसे नहीं है मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है मैं हराता हूँ मैं जीतता हूँ तुम मेरे पे पैसा लगाओ कहता मेरे पास पैसा नहीं है मैं कुछ करूँ कहा चलो मैं तुम्हारा पासवर्ड बना देता हूँ तो 5,000 रुपया उसने लगाया मेरा पासवर्ड बनवाया मैं उसके साथ ही गया उसने पासवर्ड बनवा के दिया फिर एक बंदा था दानी भाई उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे मुझे बाहर भेजो जैसे करके कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो तो पाकिस्तान में वाहिद बंदा था पहला वाहिद बंदा था जिसके पास स्टिक थी
0: इट वाजंट जस्ट अ जॉयस्टिक इट वाज अरसलान्स मैजिक वांड थ्रू व्हिच ही कास्ट हिज गेमिंग स्किल्स फॉर द वर्ल्ड टू सी
1: टिकट मेरी दानी भाई नहीं कराई थी खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल पहली दफ़ा ट्रैवल करा था जहाज में बैठा काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहली दफ़ा और ओमान में फिर मैं रुका जो दानी भाई के दोस्त थे कुछ जहाँ पे हम देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा वहाँ पर बैठे होते हैं साइडों पर वहाँ पर मैं ठहरा टूर्नामेंट खेलने गया वहाँ पर मैं जीत गया
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
1: मैं टूर्नामेंट पे गया पहली दफ़ा कोरियंस को देखा जापानीज़ को देखा उल्सान को देखा सबको मैं हरा रहा था तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है वो आया मैं इससे कहा मैं कहा मैं खेलो एफटी ना एफटी खेला तो उल्टे सीधे करेक्टर ले रहा मतलब इन्जॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है
0: इन टेकन एफटी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टू 10 मीनिंग द विनर इज द फर्स्ट टू विन 10 राउंड्स टू क्लेम द मैच
1: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता है कि नहीं मिलता ये मुझे मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके तो उसने आईडी लिया आईडी का प्लेयर था उससे मैंने बहुत बुरा मारा और लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने आईडी लेके हार रही है कहते वे आर यू फ्रॉम मैं कहा पाकिस्तान तो मैप पर गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं
0: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान And it was Arslan Ash who made it happen.
1: Hello, haan bas uthi hu main taiyari full hai aur dua karna mama se bhi kehna ke dua kare.
4: First and foremost, one of the greats. One of the GOATs, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee!
5: Boom! Group B is filled. Anakin, Rafe, Kokoma, and Al to fill.
4: Make some noise for Arslan Ash! The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good-ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
0: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds.

0: crowd's energy builds with each match. And Arsalan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
1: So Ulsan going with the white Kazumi and Arslan. I didn't realize their names are pretty similar.
2: Ab mera match hai, maine kaha isko to main hara lunga. Main stage pe hu, Ulsan wahan pe hai, main yahan pe hu, wo apni LED pe hai, main apni LED pe baitha hu. Main khero main taange meri shake karne lagne. मैं कह मेरे साथ हो क्या रहा है मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा पहले मैं ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे इस काम पर लपड़ में टांगा और मैं नर्वस हो गया मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है क्यों और वो रिलैक्स है वही बंदा वही गेम एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा बहुत ही मैं नर्वस था उसने सेम गेम की कोई प्लान चेंज नहीं था लेकिन मैं हार गया तो फिर मुझे पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना ये आपको एक्सपीरियंस आता है फिर मेरा मैच आ गया नोबी से और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना इस तरह बहुत लास्ट राउंड पे लास्ट पॉइंट पे हार तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते यू आर नथिंग
0: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Ulsan dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
3: Look at this Group B, man. We have the four-time EVIL champion, Arslan Ash, in this group. We have
4: to our next match, which is going to be a run back for the ages,
3: oh
4: MYK.
3: My goodness.
4: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
3: Let's find out.
5: So, 日本の予選でも一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで、
0: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
4: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6. Best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion. Best result in TWT 2023.
0: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
3: Stuff from Tekken 7.
4: Ninja battle. At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play, too.
3: Oh my goodness. Wow.
0: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
4: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
0: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
6: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
7: लव्ज इस्तेमाल होता था बच्चियों वाला तो ये जो फीमेल्स करेक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था
2: वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे क्या हम लड़कियों से हारे हैं
8: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज़ हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो वो ठीक है ना बॉयज़ को सूट भी करता है
2: और जो लड़कियों से खेलता था उस पर भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं थी होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
6: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियां इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की निस्बत.
9: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं, उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है, यानी कि उनको टेकन में मेल की निस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है, वो इसलिए इनसे खेलते हैं.
10: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around. His mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her.
11: Haan Zafina ka maine bataya tha, maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jab karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na, dekh rahi thi main usko khelte hue, main kaha nahi ab ye naya character aaya to isse khelo.
12: Zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ.
10: I don't think that you know like you could probably ever come up with a character that's female and Arslan would not gravitate towards. This is girls game, not it's all skill. Arslan breaking
13: rules so in this it real. Arslanash, you know, ever since he picked up Zafina and then moved over to Kunimitsu, he really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
14: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 것 같아요. 왜냐면 마지막 철권 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
13: Zafina from Arslan and Fang from Kokoma.
0: Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
15: So clean, so far undefeated in group stage play.
0: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ash isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
2: I think mere zehn mein baat dal di gayi thi meri ammi ne, is main kahunga ki first aana hamesha na. Mujhe raat ko padhai bhi karti thi kafi zyada ki first position lekar aani hai. To wo mujhe badi trigger ki, matlab jab chota hota hai bachcha uske aap zehn mein jo bhi cheez dal dete to wo is tarah se sochna padta. To meri jo mentality thi, thinking thi, main pehle to bata bhi tha ki first aana hota kya hai, first second third matlab aake hoga kya. To wo mere jo andar thinking thi na ye wali, to wo develop hona shuru ho gayi ki first aana hai hamesha school ke andar. To main school mein first aana shuru kar diya. Pehle main second aata, ek dafa second aaya tha to ummi ko pasand nahi aaya shayad, kehti nahi ek dafa first aana, kyunki khud bhi apne school mein hamesha first aaya karti thi. तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फर्स्ट आना
11: है. सुबह पेपर होने ना जब हमारी क्लास में, तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहा नाम लेना लीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि कड़ा कर देना कि ये फर्स्ट आई है. तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हों तो माँ बाप तो खुशी होती है.
2: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया, क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो, इसमें जीत हो रही है, किसी कोई हार रहा है. तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है, क्योंकि अगले को हराने का भी मज़ा आता था.
0: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back.
16: And Arslan Ash, 2-0 over Rife in
0: the His next
16: stage.
0: Big challenge loomed, Anakin from the USA.
13: It's Anakin representing Atlanta, Georgia.
0: Backed by the roaring support of the home crowd. Anakin fought bravely.
13: Today in this group stage to even give Arslan a loss.
0: But Arslan stayed calm, his focus unshaken. With sharp precision, Arslan broke through Anakin's defenses and claimed victory.
16: All victories in group stage for Arslan.
0: This win not only secured his top spot in the group, but also marked a historic moment. Arslan finishes the group stage on top.
16: As you know, he came into this event knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready.
0: An achievement he had never reached before in this TWT Finals history. As Arslan Ash advances into the top 8 from the winner's side, one question lingers in his mind. Will his ultimate rival Ni make it too? The fierce rivalry that began at the 2018 OUG tournament in Dubai

0: is now reaching its peak in New Orleans.
1: I think आपको अपनी जर्नी में एक ऐसा राइवल मिलता है जिसको आप हराना चाहते हो हर सूरत में और आपके लिए काफी इन अ वे काफी हेल्पफुल रहता है तक मंजिल तक पहुंचने में
0: But defeating the very hero who inspired you is never easy.
1: 2018 दिसंबर में ओयूजी की बात है टूर्नामेंट का नाम ओयूजी तो मैं स्टेज पे हूं अनाउंस हुआ नहीं एवर्सिडर अरसलान ऐश आ जाए तो मैं स्टेज पे गया तो सेम सीन हो लपड़ा मेरी टांगे रुके ही ना मैं ऐसे रुकूं मेरी टांग ऐसे हो जाए मैं मतलब इस तरह मतलब लिटरली इस तरह शेक कर रही थी कि मैं खुद नहीं बता सकता बहुत तेजी से बहुत ही अजीब फीलिंग थी वाली
0: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Ni seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first-ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
1: पर मैंने ना हिम्मत इकट्ठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है जिंदगी के अंदर वो मैंने अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पे बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो CA की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने वीज़ा में मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
0: But Arsalan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality. In the grand finals, Arsalan achieved the impossible. A fairy tale ending to an unimaginable journey.
2: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
0: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
1: Twitter खोला कोई 1000 followers हो गए. बड़ी जा रहे हैं, बड़े लोग follow कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक player आया है, पाकिस्तान का भी कोई नाम है. YouTube पे लोग मुझे कर रहे हैं. पहली दफ़ा मैं YouTube पे वीडियो आने लग पड़ी और मुझे पता नहीं फेमस लोग मार्कमैन जो अब ईवो पे जिनका वो जो है डायरेक्टर सारी के किस नी को हराया है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे फिर पाकिस्तान आया लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नी को हराया फिर इमरान की मुझे कॉल आई मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पर था तो कहता है अरसलान तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम खिला सकते हो नी को और मैंने कहा था कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में तो लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे तुमने किया है काम
0: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arsalan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
3: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this is actually, this is like an instant collector's piece now.

0: You know, it was his first time being on the scene, so everyone expected, of course, Knee to win. But, you know, once he's done it consistently, and not even just beating Knee, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
1: बहुत ट्वीट्स थी आई डोंट नो हाउ मच ट्वीट लेकिन मैं ट्रेंड कर रहा था उस वक्त पूरे यूएसए के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान में कोई थर्ड नंबर पे यूएसए के अंदर पहले नंबर पे मैं ट्रेंड कर रहा था उस वक्त यूएसए इज़ मैसिव तो वहाँ पे ट्रेंड करना इज़ अ ह्यूज थिंग और ईवो की वजह से आई वॉज ट्रेंडिंग इन यूएसए आई वॉज गेटिंग अलॉट ऑफ फॉलोअर्स और लोग दुनिया के जहाँ से भी हैं ट्वीट्स कर रहे हैं फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होना पड़ा था तब तक और फिर मैंने सजदा किया वो जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था
2: paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
1: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी सजदा क्यों किया गया अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी स्टोरीज लिखी गई आर्टिकल्स लगने लग पड़े काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त ही मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
3: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे ये जब जीता है ना सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब यही वसीला हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे
1: हमारे पास पैसे भी थे तो और मैं जो 2 लाख जहाँ 2 लाख से सोलह का शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास मतलब आम से ज्वेलरी आम सा पर्स आम से कपड़े सारा कुछ आम सा तो अब शादी किस तरह करना है तो शादी के लिए भी उधार लेना पड़ना था तो उधार दे रहे दे कोई नहीं रहा था खानदान में
3: तो उधार कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जा रहा है ना तो इसको हमारा वसीला बना दो
1: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार बेटा भी कुछ नहीं करता इनका और अब उधार दे दे तो भज जाएंगे तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था
3: तब ये जीते जाओ तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर से करीब हो तो वाकई इस तरह सुना फिर हम रोने लग गए तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो किसे वो मेरा इमोशन पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था
1: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का
4: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
5: Arslan, big day. What are your thoughts?
6: बस प्रेशर में रहिए कोशिश नहीं कर रहा ना नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम बाकी जो रहा अलग मंजिल हाँ मैं रेडी हाँ मैं खुद तो रेडी नींद पूरी किया नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है
7: कल परफॉर्म तो अच्छा किया काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया अभी आज का मैं लोहा हिस्से है वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं 6 तो कोरियन है एक जापानी है उसके एक पाकिस्तानी देखते हैं क्या होता है
5: पाकिस्तानी अब आप ही हो खाली इस बार
7: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
1: है एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है।

0: है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता, उनका स्टाइल नहीं देखता, मैं बस करेक्टर को देखता हूँ उनके. मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते, होता कुछ हो रहा है. तो मुझे नहीं की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना, प्लेयर्स को देखना नहीं है, मैं करेक्टर्स को लैब कर लूँगा. अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लो हाई से, लो हाई के करेक्टर्स देख लेता हूँ, उनके करेक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़. लेकिन हाँ, मैं स्पेसिफिकली लो हाई को स्टडी नहीं करूँगा, शाह होता है उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी.
1: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है,
2: ये हैंड वॉल, ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते. लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कंफर्टेबली रहते हो, आपसे दुबते नहीं है बेटा. तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मत ही रहने भी बोलता मैं बोल दूँगा. Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
3: To be honest, I want Arslan to take it. The Lohai has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
4: The crowd buzzes with electric energy as Arslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick and every move matters.
5: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
6: Oh, that is game number one for Lohai.
4: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
0: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच, पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था, पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया. तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस, मैं नॉकटिस खेला था और मैंने खुद भी कहा था, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ, मैं कुनी मिर्च से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा. तो आतिफ वाज लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनी मिर्च और उसकी गलतियाँ देखो.
4: In the second round, Arslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
7: Arslan looked good in that last game, and knee comes up over
5: the
7: stage.
5: Oh my God!
7: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
4: Knee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Arslan will clear his own path to the throne.
7: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand this?
4: Arslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
0: Four days after the flight, so let's pray. Who will you play with? Who will you
8: play
0: with? Now, Kunal Mirsu, Noctis and Zafina. नहीं, ज़फीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया, लेकिन मैं नॉकटिस
8: और बताया इतना वीक भी हो गई है ज़फीना.
0: हाँ, नर्फ भी होता पता है आपको, तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. बाकी आपको कहाँ साथ है और देखते हैं आप.
8: मानो भी
0: साथ, मानो भी वैसे तो जीत रहे तो मानो ने जिताना, मानो ने मानो आपने जिताना, ठीक यही जिताएगी मेटे का.
4: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
0: हाँ, मैं बिल्कुल believe करता हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद दो ही वो जीत गया था. और शादी से पहले मुझे बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी जो कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता. आई थिंक दुनिया है तो आपको हर बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए. कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे. इवन एक करेक्टर है गायल, तो वो जब जीतता है ना, वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो, मतलब गो एंड हैव बेबीज, इस तरह करके बोलता है. जब शादी कर ली, जिम्मेदारियाँ आ गई, बेबी आ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते. अब आप गए, अब शादी वाले, अब पेरेंट बन चुके हो, घर बैठो, आप बच्चे पालो जाके. अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले. लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर, आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मेसी, रोनाल्डो, उनके बच्चे हैं, लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया, शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते. लेकिन मैं शादी के बाद 2 चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी, और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी.
4: Arsalan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Nee enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
5: There you go.
7: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Nee to take the set.
5: All right, here we go. Already blocking. Big one. Oh, staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
7: Oh!
5: What's gonna happen?
7: I
5: can't believe it!
7: Oh my God!
5: What happened there? All right, guys, here we go. Final game between these two. Give it up, Rump.
7: Yo, make some noise for these guys, bro. The Tekken is going so high right now. Be careful. Has to be careful.
4: Oh! In a shocking twist, Rangchu eliminates Nee in loser's top 8. Sending shockwaves through the arena.
5: Is moving on, and Nee unfortunately eliminated at 7th place here at TWT.
4: Nee's chance slips away for the final time. Will Arsalan seize the opportunity and make it to the finals?
7: Remember, this is Tekken 7. We're talking about Nee. Make some noise as he is eliminated from the final Tekken 7 Tekken World Tour tournament.
4: Nee's elimination shakes the community, but for Arsalan, it brings a sigh of relief. Was he truly ready to face the legend? Or did fate spare him this time?
0: मैं भी घबरा रहा था क्योंकि क्या सीन है कि अब जब आप अपने ओपोनेंट से काफ़ी दफ़ा खेल लेते हो तो उसको आप अपनी चीज़ें बता देते हो, काफ़ी ज़्यादा अपना गेम प्लान भी शो कर देते हो. मतलब ये तो नीट टू टॉप क्लास ले रहा है, यानी कि मेरे से हमेशा हारता ही जाएगा. और वो जितना क्रेजी है, वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो हरा कर ही रहता है उस चीज़ को.
4: जस्ट एज द रोड सीम्स टू क्लियर, a familiar challenge appears. Ulsan, the player who defeated Arsalan in the 2022 TWT Finals, now stands in his way to glory. The stage is set. The tension is unbearable. Can Arsalan overcome his past and reclaim his crown? Or will history repeat itself? Hearts race. Breaths are held, and the atmosphere is electric. Arsalan feels the weight of the moment.
5: He's got the bomb. Well, she is definitely out here to steal some hearts. Can she do it right now? Ulsan, I talked about this throughout. He has a sliver.
7: Oh, went for backswing blow again. Arsalan says no. Just a small dash forward.
0: उनके उल्सान वाला मैच, I think मैं ज़िंदगी में कभी इतना tough match नहीं खेला life में, जितना उल्सान और मेरा match था. Winners final.
5: Both of them work. Final round here, one apiece.
7: Catching the sidestep on top of it. Goes for the spin, not gonna work out. 1-2-2.
5: He's definitely brought some of the stuff that he's been studying and labbing. Oh, and another big block against on the down three. He's gonna have to watch out.
7: Ulsan asking the crowd for more. This is a race to three, and Ulsan is asking for more. 14 seconds left on the clock.
5: Arsalan has access to range drive now. Oh, he's gonna get it. Then the follow-up, the big sweep. I can't believe it.
0: मतलब वो मैच ऐसा था कि अगर मैं हार जाता मैच तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि उस पॉइंट पर हार कर आप हार अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो. तो वो मैच जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था.
7: Pakistan flag in the crowd. I saw 2 of those bad boys.
9: I'm just gonna take a page from Steve. Good ass Tekken.
10: Good
9: ass Tekken.
10: Good.
9: One more.
11: I'm gonna be real, man. I just want to reset. 2 more.
5: I love Arthur. Oh my God. Here we go.
4: The match is intense, with every move increasing the tension. In a show of pure skill and determination, Arsalan defeats Ulsan securing his place in the grand finals.
0: उसके बाद बैक से जाके मैं लिटरली रो रहा था कि मैं किस तरह जीता हूँ. वाकई मुझसे वो मेरे इमोशंस आप देखोगे कि मैं बहुत ज़ोर से मैंने वो किया था जीत के, और आतिफ भी आया था और आई वॉज लाइक सिटिंग देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और अपना हेड डाउन किया हुआ था, और वो बहुत इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए. उतना इंटेंस मैच मैंने नहीं खेला.
4: Now the stakes are even higher as Ulsan prepares to face CBM. The winner of this thrilling match will meet Arslan Ash in the finals of Tekken World Tour 2023, the last Tekken 7 tournament.
10: He has to be careful. Oh, he got him! He got him! And just like that!